साथ ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक चले मोदी हाँ साथी जन्मभूमि आम गौरवर कारण यही भूमि रे अनेक महान व्यक्तित्व जन्म नहीं जेउमाने कि देशर मर्यादा बढ़ाई स्वाधीनता संग्रामी माने निज जीवन बलिदान करी देश को स्वाधीन करथिले से मानकर त्याग आमको शिक्षा जे जन्मभूमि पई सबकिछि देबा उचित जन्मभूमि रो सम्मान रक्षा करिया पई आमर प्रथम कर्तव्य

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी

सिकंदर के घोड़ों की टापू ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती माँ ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, माँ ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं था। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा

0: क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं
1: वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून कर छंदे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चले छी मोदे सा हां साथी जन्मभूमि केवल गोटे भौगोलिक स्थान नहि यहा हमर अस्तित्व एही भूमि आमको नाम परिचय गौरव दै थै जदि आमे निज जन्मभूमि के भल पाइबा ओ तहार उन्नति पई आमे काम करबा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध

है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय वर्तमान सकाळ 6:05 सुनिश्चित आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आरंभ करुचु भक्ति संगीतर कार्यक्रम अर्घ्यथाळी। आज सकाळे मु आपणंक सह रहिची आपणंक साथी स्मृति।

सुनछंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आज सकाळ रे आपण माने सुनछंती आपणक साथी स्मृति को कार्यक्रम चली छि भक्ति संगीत र अर्घ्य थाळी देवी सावित्रींक मानवी सावित्रींक प्रति आशीर्वाद एवं करुणा किपरि

सुनछन्ती भक्ति संगीतर कार्यक्रम अर्घ्य थाली। तबे सावित्री व्रत बा सावित्री ओषा को नै एक सुंदर पौराणिक कहानी रही जहाँ एक सावित्री अमावास्या बा व्रत दिन व्रतधारी माने पाठ करती बा सुनती। मद्र देश में अश्वपति नाम जन राजा राजत्व करुथिले। से थरे एक यज्ञर आयोजन कले। यज्ञरे संतुष्ट होई देवी अश्वपति दर्शन दे मन मुताबक बर मागिबाकु कहिले। राजा निसंतान थिबारु पुत्र संतान पाई देवी पाखरे मिनती कले। देवी राजा को पुत्र संतान लाभ करिबा योग्य नथिबा सुचाई दे एक उत्तम कन्या हेबार आशीर्वाद दे अंतर्ध्यान होइगले। उपयुक्त समय रे देवी कृपारु अश्वपति पत्नी कोल रे कन्याटिए जात हला। सावित्री बा गायत्री को उपासना करी तांको आशीर्वाद रु कन्या संतानटिए लाभ करितिबारु राजा तांकर नाम सावित्री रखिले। सावित्री क्रमे जौवन रे पाद देबा परे पिता अश्वपति आदेश मते निज इच्छा रे बर खोजिबाकु सम्मति प्रकाश करी सहचरी मानंक सह पति अन्वेषणार्थ भ्रमण करिबाकु बाहरिले। तबे आगकु कोन हैला से विषय निश्चय कथा हबा। इंत समय वर्तमान आउ एक सुंदर भक्ति गीत।

सुनी चंदिया का स्पाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक कार्यक्रम चली भक्ति संगीतर अर्घ्य थाली आज सकाल शुणी आपण स्मृति को समय वर्तमान सकाल 6:26 तबे पिता इच्छा बर खोजा सम्मति प्रकाश कर सहचरी मानंक सह पति अन्वेषणार्थे भ्रमण करने को बाहर मानवी सावित्री साल्लो देशर राजा दुमत सेन औरसरे सैव्या गर्भर सत्यवान जन्मग्रहण कर दैवी दुर्विपाक सत्यवान शैशवस्थर दुमत सेन अंध एवं भ्रष्टराज्य बनवासी सत्यवान बणरे फलमूल खाई मुनिवृत्ति अवलम्बन कर भक्ति सहकारे पितामाता सेवा करुथिले सावित्री भ्रमण करू करू से बणरे पहुंच सत्यवान असीम पितृभक्ति धर्मपरायणता एवं तांकर उपरे मुग्ध हो ऐश्वर्य भोगलालसा त्याग कर सहित जीवन जापन करने संकल्प कर सत्यवान को पति रूपे मनोनीत कर राजधानी को फेरी पिता जनईले समय रे नारद उपस्थित हो सत्यवान परमायु आउ मात्र एक वर्ष थिबा जनई निज मत बदल सावित्री को अनुरोध कले मात्र सावित्री ए प्रस्ताव को प्रत्याख्यान कर निज निष्पत्ति अटल रहिले अगत्या उभय पक्ष पितामाता अनुमति क्रमे सावित्री सत्यवान सहित यथारीति विवाह संपन्न हला विवाह परे सावित्री पिता गृहर राजसंपद विलास एवं दासदासी वर्ग को त्याग कर स्वामी सहित तपोवन कुटीर रही सासु ससुर सेवारे लागी पड़िले

सदी सुनी छंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आज सकाल आपण माने सुनी छंदी आपणक साथी स्मृति को कार्यक्रम चली भक्ति संगीतर अर्घ्य थाळी तेणु सावित्री केवल जणे पतिव्रता नुहंती से नारी शक्तिर जीवंत प्रतीक आज मध्य ओडिशारे घरे घरे सावित्री व्रत बहुत भक्ति एवं श्रद्धार सह पालन करा जाए। सकाळु महिला माने स्नान करी नुआ वस्त्र पिंधंती सधवार समस्त प्रकार अलंकार जेपरिकी अलता शंखा सिंदूरें सजे उठंती बटवृक्ष निकटरे पूजा कराए कारण बटवृक्ष को दीर्घायु एवं अमरत्वर प्रतीक बोली मना जाए। महिला माने बटगछ को सूता बांधि परिक्रमा करती हाथ जोड़ी प्रार्थना करती मो परिवार सुखी रहु स्वामी सुस्थ रुहंतु। ए व्रत आमको सिखाए संपर्क केवल कथार नुह विश्वास धैर्य एवं समर्पण से गढ़ी उठे। हाँ बंधु आज समय सावित्री व्रतर अर्थ केवल उपवास नुह यह परस्पर प्रति सम्मान भल पाइबा एवं संपर्क मूल्य बुझार एक सुंदर संदेश। स्वामी स्त्री संपर्क सबुबले सुंदर होते जेतेबले दुहें एका अन्यर सहयोगी हुंती। सावित्री कथा आमको सिखाए अतुट इच्छा शक्ति एवं सत्य प्रेम थिले असंभव मध्य संभव हो पारे। तेणु आज पवित्र दिन में समस्त मां भौणी एवं विवाहिता नारी मानंकु अनेक अनेक शुभेच्छा प्रभु जगन्नाथ निकटरे एतिके प्रार्थना प्रत्येक परिवार रे सुख शांति एवं स्नेह भरी दियंतु।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा है,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

मालम है। गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानसर उन्नीसतम भाग शुणीपारे आज संध्या छटा बाजि दस मिनिट्रे परे परे संध्या को आउ टिके भक्तिमय करिबा पई भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना ने हाजिर हो संध्या छटा बाजि तीस मिनिट्रे तेबे एफएम रेनबो रे जमीब संध्यार आसर संध्या सातटा बाजि पचीस मिनिट्रे राति आठटा रे सुनी पारिबे कार्यक्रम गीतरे मीतरे एवं राति नौटा बजे पंदर मिनिट रे सुनिबे अभुला स्मृति। सुनिले आज प्रचारित होबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्क रे किछि सूचना समय वर्तमान हेबा पई जाउछि सकाळ सातटा बजे पांच मिनिट सुनंतु आंचलिक संवाद आम केन्द्र रु किछि समय भितरे

माय फ्रेंड्स वेलकम बैक एंजॉय करुछंती किछि ब्यूटीफुल ट्रैक सुनछंती आज रा सकल सकल एफएम रेनबो रे स्मृति को शुभ सकल सो तबे आज सकलटा बहुत सुंदर किछि कथा नै केसिछि आज रा दिन बहुत ही विशेष बहुत ही खास आज दीटा अंतर्राष्ट्रीय दिवस आमे सेलिब्रेट करछु गोटे होछि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस एवं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट फ्रेंड्स ए दीटा जक डे गोटे संदेश दे थाए मणिष मणिष मध्यरे भल पाइबा आउ जीवनरे आलोक बांटिबा कथा बागु को किंतु गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय करू थांतु सुन थांतु आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक

बेवफा तो वो निकले, हम तो आज भी वफा निभाते हैं। बेवफा तो वो निकले, हम तो आज भी वफा निभाते हैं। वो गेरों की बाहों में खुश है और हम उनकी यादों में मुस्कुराते हैं। हे फ्रेंड्स, सुन रहे हैं आप सुबह सकाल सो ओनली ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4, दिल से दिल तक। आज की सुबह मैं हूं आपकी हम सफर होस्ट स्मृति। द्विती दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस एंड इंटरनेशनल डे ऑफ लाइफ। आज दुईटा जाक दिन जोटा कि समान बार्ता दे थाए। हाँ बंधु, आज दिन आमको शिखाए शांति रे बंचिबा एवं आलोक बांटिबा। ए दुईटी होची सुंदर पृथ्वीर भीति, तेणु निज भितरे से आलोक जळेबा आवश्यक। निज भितरे से आलोक रे समस्तंकु शांतिर पथरे आगेबा आवश्यक। आलोक जहां अंधकार को दूर करे, जहां ज्ञानर प्रतीक, जहां आशार आरंभ। ए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट आमको स्मरण कराए जे विज्ञानर आलोक किपरी मानविकतार उन्नति करुछि। आज आम मोबाइल हो, इंटरनेट हो, चिकित्सा विज्ञान हो, सबुठ आलोकर अवदान रहिछि। किंतु सात्विकतार आलोक केवल बाहर नुहे, आम मध्यरे मध्य आम भितरे मध्य रहिछि। जेतेबेले आमे अन्यको साहाय्य करू, कहा मोरे हस आणु, सेतेबेले एई आलोकको आमे जळेइथाउ आम भितरे।

सुनी छंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आज सुंदर सकाल शुणी साथी स्मृति को समय वर्तमान सकाल 7:55 तेरे सुंदर सकाल आमको दुईटी बड़ संदेश शांति एका साथी बंचिबा और निज भितर आलोक को सारा पृथ्वी में बांटिबा। हाँ फ्रेंड्स, मन रखंतु गोटे छोट हस कहार दिन को सुंदर करिपारे, जोटा कि स्मृति सबुबले जे सकाल सकाल गोटे गुड मॉर्निंग स्माइल समस्त दिन को बनई थाए जहाँ को आपण से स्माइल टी देवे। गोटे कथा गोटे भल कथा कह मन भितर अंधकार को दूर करिपारे। आम समस्ते जदि निज जीवन में शांति सहयोग और भल पाइबा को जगह देवा ना, तेज पृथ्वी निश्चय आहुरी सुंदर देखा। आलोक केवल विद्युत किंवा सूर्यर नुहम, सत्यर आलोक हूँ ज्ञानर मानवतार आ भल मनर। आसतुना आज ये सुंदर मुहूर्त गोटे छोट कथा निज भितर प्रतिज्ञा करे कहा मनरे अंधकार नुहे आशा जगेबा, घृणा नुह भल पाइबा बांटिबा और समस्त मिसी शांतिर पृथ्वी गढ़ा। हाँ फ्रेंड्स, आज सकाल साथी स्मृति को आपुंट तेरे चलतु समय वर्तमान आउ गोटे ब्यूटिफुल गीत आपखकू इंजय कर तेरे ये कही रखुच सका 7:56 अलरेडी हो कि समय पर आपणीपर सका 8:00 समाचार प्रभात आकाशवाणी एफएम रेनबो डेली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन

0: नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
4: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
5: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में

0: राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गई। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी यह परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही CBI दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है पेट्रोल डीजल 3 रूपये महंगे, CNG के दाम 2 रूपये बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित

सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं मेरे दोस्तों, जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, और वैसे ही रिश्ता आपका और हमारा है। एफएम रेनबो के प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक ही परिवार, एक ही फैमिली से जुड़े हुए हैं। एंड आज रा सुबह, आज रा सकाल रे मु आपनक साथ ही स्मृति रही जी। तो चलिए दोस्तों, इस मॉर्निंग को और थोड़ा मेलोडियस बनाते हैं, क्योंकि सो शुरू हो चुका है मॉर्निंग मेलोडी। आज गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय करू था, आम सहित रही था चिपके की एंड कहू था दिल से दिल तक।

वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, सुन छंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक अपनों को साथी स्मृति को आज रा सकल रे अपन माने सुन छंती एंड सो चली छी मॉर्निंग मेलोडी। बिल्कुल मॉर्निंग मेलोडी रे आपण मानको किछि मेलोडियस गीत रे मुझो मौछि अब एंड ता सहित कथा होचो डेंगू विषय रे, कारण आज होचि जातीय डेंगू दिवस, तेणु सचेतनता निहाती भावना आवश्यक। बंधुगण, डेंगू हेले नीचे औषध खाइबाटा बहुत बड़ भूल, विशेषकर पेनकिलर औषध डाक्तर परामर्श बिना तो जमा भी खाइबा उचित नुह। कथा हला जे किभली भावरे आपण जो डेंगू को अन्य प्रति अन्य मानको सचेतन करै परिबे। आज दिन रे स्वास्थ्य विभाग पक्ष सचेतनता रैली सब बाहरी थाए, आज दिन में स्कूल कॉलेज रे आलोचना चक्र हुए, सफा सुतरा अभियान चली थाए, पोस्टर स्लोगान जन जागरण कार्यक्रम हुए, डाक्तर एवं स्वास्थ्य कर्मी माने घरे घरे जाई लोक मानको सचेतन करती भयावह डेंगू रोग विषय। वार्ता रही आज सचेतन हुआ, डेंगू को दूर रखत। तेणु बंधु मैंने डेंगू को रोकवाई आम कौन कर, घर चारिपाख को सब बड़े सफा सुतरा रखत, कौटि भी पा जमी रहा भाई सिचुएसन जमती न हुए, पा जमी रहा भाया कौन भी जिनस रखनी, पा टांगी को सब बड़े घोड़े की रखत बा ढाक रखत, मशादानी व्यवहार करते जिते शौं पूरा हाथ में मान फुल कपड़ा पिंधिक शुअं जदि मशा रोचे, आ शिशु मान मशार सुरक्षित रखत। हाँ बंधु, मन रखु गोटे छोट असावधानता बड़ समस्या आनी दे पारे, तेणु निजे सचेतन हूं एवं अन्य मानंकु मध्य सचेतन करंतु, कारण सबुबले स्मृति कही था आपण मानंकु हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपद। आमे जदि आज अल्प सचेतन हेबा आसंता काली आम परिवार सुरक्षित रही पारिबो। डेंगू कौनसी भयंकर रोग नुहे फ्रेंड्स, जदि समय अनुजाई सतर्कता अवलंबन करा जाए बा सतर्क हेइ पारंती आपण माने, ताहाले डेंगू को आमे एड़ी दे पारिबा। ताले आसंतु आज दिन रे शपथ नहीं पारे गोटे।

शपथ नै परिबा जे मो घर मो परिवेश रखिबी सफा सुतरा अवश्य पाणि जमिबाको देबिनी केबे डेंगु आसिबो नाही आम घरे। एटा ही थिला जातीय डेंगु दिवस उपलक्षे आजर कथा। तबे समय सरी सरी आसुचि एटी कहि रखुचु सकाळ 9टा र 10टा डायल इन लाइव शो रहिबो आपण मानक सहित स्मृति डायरेक्ट लाइव कथा हबो। फिलहाल एन्जॉय करन जे ब्यूटीफुल ट्रैक टी आसी आपण मानक बाकु।

0: आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। जय जगन्नाथ, नमस्कार।
1: नमस्कार, बुझी गलु। आम नारायण भाई आम सहित कनेक्ट हो जाइ छथि।
0: आज्ञा।
1: ओके, तो केमिति अछथि?
0: हाँ, बहुत बढ़िया अच्छी। मुझे व्यस्त रहती मोर चलती बर्तन आज बजा सीजन आइसक्रीम बेपार।
1: हाँ,
0: आ प्रोग्राम में सब वाले सुनुची किंतु तो दुख लागू श्रोता किसी मत नहीं सब कहते हैं विभिन्न प्रकार सब आप विषय में जानना मुझे रेडियो लफड़ा बाड़ डॉक्टर शांतन कुमार रथ आम श्रीमान सर देखते ओडिशा बारे में पाई राइजिंग मिनिस्टर रेगुलर मिनिस्टर।
1: ओके ओके, नारायण भाई शुणु शुणु एमती बहुत किसी कथा सब भल शुणी बोली किसी मान अच्छी तो सबुबले माने भल प्रशंसा न शुणिकी भगवान को डाकंतु जेते खराब कारण जदि आपने जेते खराब
0: रिकॉर्ड करे जाउ आपन जान नथि सुकांग पई मते बिन प्रकार रिकॉर्ड अछि मोर गोटे संग पाई जबिका गोल्डन रे बाबू कफर रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ रे।
1: ओके, तो सेही कथा मु कहू छी तेनु जेते माने आपनकर विरुद्ध रे कहिले मध्य सेटा आपनक पई भल। ओके, सबुबले पॉजिटिव नियंतु। तबे कहंतु आज प्रश्न उत्तर कौन कहे केमती कौन पिला दिन रे बापा मांग को कथा आपण को जमा भल लगे शुणा को
0: मत सत कथ कह मत बापा की माँ पठे जा सौदा आनु दुकान को।
1: हाँ,
0: मत भारी खराब लगे कहीं खराब लगे मोर गुण छह टाँग देते कौन जिन आने मुझे दस कोटी टाइम खाई जिन आती बापा सुधी कह तेज छह टाँग देखा पैसा कह गला खाई मुझे कौन करेंगे बापा को मत तुम सौदा पठा दुकान को मुझे जापरि।
1: अच्छा अच्छा, डर लगे पैसा नहीं जाइए बापा कही नहीं आसो आप खाई था
0: मोर इच्छा कौन देखे खाई दस कोटी टाइम खर्च कर देखिए।
1: अच्छा, हिसाब मांगती मत
0: कहीं सौदा भर।
1: अच्छा, मीछ कह पड़े?
0: हाँ, बड़े मिछ कह पैसा कह गला।

0: ଖାଇଦେଇଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଉ।
1: अच्छा अच्छा तापरे आउ आपण गले ना गलेनी त जो सौदा
0: जाय किंतु विरक्ति अनुभव करे मते काय मते काय एकला काय सौदा पे मामे दी भाई थिलु ओके बड भाई के पठने मते काय सब दुकान सौदा पे पठौ जों।
1: अच्छा
0: ओके मन रे विरक्ति प्रकाश करे कहि पारे ना किंतु विरक्ति प्रकाश
1: किंतु देखन दो आज आपण बिजनेस करू छंती रास्ता रे आपण बिजनेस करू छंती सब जगह को जाउ छंती त सेई कोनस ना कोनसी जगह रे सेई अनुभूतिटा वर्तमान आपण कर काम रे आसुची।
0: आज्ञा
1: ओके थैंक यू सो मच नारायण भाई आज कॉल करथिवारु
0: नमस्कार।
1: सो माय फ्रेंड्स आपण माने भी फटाफट कनेक्ट होंतु 0671-2303-153 ए नंबर रे स्मृति आपण मानक सहित रहिची एंड पचारुची जे बचपन माने छोटो बेले पिला बापा मांकर को कथाटा जम्मा भी सुनिया को पसंद लागेनी भारी विरक्त लागी थाए एंड बहुत गुडे कथा रहिची बहुत गुडे मेमोरीज रहिची आ माध्यम रे आमे सामना को आपण मानकर सामना को आसीबो आम सामना को आसीबो आपण मानक कथा आपण माने फटाफट कनेक्ट होंदु देखिबा आउ जने कलर आसलेनी की अछंदी। हेलो
2: हेलो
1: हाँ किए कहू छंती
2: सलता साहू।
1: अच्छा उसलता भोनी हम सहित कनेक्ट हो जाई छंती आ आज सावित्री कर छंती
2: भाई नि सावित्री काम करी
1: आ मन भीतर का गुडा भावती कर देबे सेत्र कर जी नहीं सावित्री किछ नहीं। अच्छा ओके अच्छा उसबोनी कुहंतु बचपन रे छोटो बळे बापा मांकर को कथाटा
2: हां वाली सेकंड कलर रही गली।
1: हां सेकंड कलर आपण
2: भाभी लागिवनी पोदिन के पुनोड आसले लगेलो।
1: अच्छा हां हां मु से भाभीली माने आपण तो पूरा फनी वे रे कथा बंदी आज पूरा शॉक दे जाई छन ना माने हठात फोन दी लागि जाई छी।
2: हां सक्सेस लगेली सक्सेस के लेली बेली बासन लेके जाउतली बाजी बोली बासन सब हाथ रु खसी पइला पुनी घर का पछिया को पइला।
1: छोट बेले बापा मांकर को कथा जमा सुनिया को भल लगे भारी विरक्त लगे
2: छोट बेले मो बहुत प्रतिवाद कर प्रतिवाद
1: कर सुना
2: गोटे बाहर तार इच्छा ना न जाऊ
1: हजिजी का मौसा बोली माने तम बो पूरा गोड़े गोड़े जगी जदी नहीं कि
2: हां तो भाज कहो हम जो को के रह जाऊ जी।
1: हां
2: आउ समस्त अछन घर से तारे ओड़े फटे फटे के बुलुती के जा कर।
1: हां अच्छा दूर जगह को माने
2: ए तो खोज तुम।
1: अच्छा एबे ए जो पाखरे गले एमिति हो जंदी गां फा टिके बाहरु गले। अच्छा दूर जगह को केबे जाई नांती
2: दूर जगह को जिबा को गले हम ताको कते कंट्रोल कर के जाए।
1: कही कह कि पूरा फोन रे भी कनेक्ट रहुथिबे बदे बोंग सहित नहीं कि आज एठी पहुंचली सेठी पहुंचली एया करूची सेया करूची
2: मु ताको फोन करेनी मु का भी से कहबो के आछु। हां मु तो जाय जगह दैगर गुटके जाय न मामू घर गुटके जाय।
1: हां
2: मु ताको फोन करेनी सी ओल्टी फोन करिबा को कोन आसी हम आइल जोन जाई दिस चाइल तो बाती भी रहयोन।
1: अच्छा किदु या भीतर देखी छन त केते सुंदर फल पाइबाटी तंकर रही छी बहुत भल पाइबा रही छी आपन को प्रति माने जे कोनेनी मो आखी सामना रु मो हृद मो पाखरु से कुआडे भी न जाऊ मो आखी सामना रे थाउ नै
2: बसी गडे पान खाउ छी तो कोनी मीठा पूरा फोन करते तो कोनी मीठा पूरा बडा बारे बोल रहा ठीक।
1: अच्छा हो माउसी को हमर नमस्कार जणे देबे हैला बहुत बहुत धन्यवाद आज कॉल करथिवारु।
2: हां सस दीदी नमस्कार
1: बहुत सुंदर कथा आपण मानक पाखरो आसुची 0671-2303-153 ए नंबर रे आपण माने आम सहित कनेक्ट होउचंती एंड आज स्मृति पचारुची आपण मानको जे पिला दिनर बापा मांकर को कथाटी जमा सुनिया को भल लागु नथिला भारी माने विरक्त लागुथिला माने कटु लागुथिला सेतबेले पसंद आसुनथिला तो सेमि अनेक किछि फनी कथा बहुत गुडे कथा आसी थाय सामना को आपण माने आम सहित शेयर करि परिबे आज रो दिन रे देखिए आज जन कॉलर आसगले कि अच्छा। हेलो
3: हेलो मैम नमस्कार जय जगन्नाथ।
1: नमस्कार जय जगन्नाथ किए कहते हैं
3: मैम हम प्रफुल्ल प्रधान कहती कुआर पाल माणिया मंदिर
1: प्रफुल्ल भाई आम सहित कनेक्ट होती बहुत दिन पर कथ हलु नहीं
3: मैम लगुनी तो घंटा घंटा लगे भाई।

0: सुनी शांति आकाश वाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छी डायल इन लाइव स्मृति को सुनी शांति लाइव आपण माने आज सो स्मृति पचारु छी जे छोट बळे एमिती को कथा जोटा बापा मांकर कथा जोटा की जम्मा भल लागेनी से समय सुनिबा पई आपण माने बहुत मीठा मीठा स्मृति आपण मानकर बांटु छंती अवला स्मृति सब तो देखिबा वर्तमान कॉलर की अछंती हेलो
1: नमस्कार जय जगन्नाथ
0: नमस्कार जय जगन्नाथ
1: केमती अछंती कोन
0: केमती लागु छी
1: आपण पूरा माने कहले आपण बुवाल अछंती पूरा
0: अच्छा
1: किंतु गोटे माने लॉक मोर खराब मो गुरुवार जो आसीथिले मु भाविली सानोटा पर कॉल करी मोर त लागिव
0: हां
1: किंतु सेतना प्रायोजित कार्यक्रम थिला आने सेटा मु मिस करछ
0: अच्छा ओके ठीक अछि नो प्रॉब्लम आज ही लागि गला गोटे दिन पूर्वर कथा हो
1: निश्चित लाग न लागे रे संदेह नै लागिव
0: अच्छा
1: रश्मि
0: भाई आम सहित कनेक्ट होइछन्ती
1: रश्मि रंजन साहू त्रिनाथ बजार फुलखरा
0: अच्छा ताले आज कौन चलछि सावित्री होउछि सत्यवान हेले
1: नाही सत्यवान नहीं मैडम हम गाड़ी चाबी टा नै पळैछन्ती मंदिर कहले दुकान दाइ न त मु आछि
0: आज पूरा माने आउ किछि कहि हबनि हला से मानकर माने आज मैडम कर कथा ही चलिव
1: आज बा पुआ पिला मानकर गोटे दिन
0: गोटे दिन आज पूरा भगवान ही बसिबे हो नै कि
1: आज पूरा भगवान ही बसि आज गोटे दिन आज किछि कहिबेने आज नथले आज जहार जहार नथो भाई सब एडजस्ट कर देबे
0: हां अच्छा
1: आज सब एडजस्ट हो जो
0: काली के रिवेंज हो
1: उपवास
0: रहिबे आपण भलसे खाइबे
1: मैडम कमेंट करी
0: अच्छा हो ताले रश्मि भाई कुहंतु आज हमरो जो पचरा जाउची तो से विषय रे कोन कहिबे आज रे शो रे
1: एक्चुअली छोटो बळे किंतु मुटी माने बदमाशी कर शेष सीमा रे पहुंचे हला मोर बेसी बदमाशी होची खरा दिन ने स्कूल छुट्टी 11 तारे

0: मोहब्बत का फसाना।
1: ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में।
0: वो रूठना मनाना, वो हंसना रुलाना।

0: बनाया।
1: चित्रहार प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे शाम 6 बजे
2: सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल
3: आकाशवाणी FM रेनबो।
4: हर दिल में छुपा एक एहसास है, हर दिल में छुपा एक एहसास है, हर नजरों को एक नजर की तलाश है। आपसे दोस्ती यूं ही नहीं की हमने, हाँ क्योंकि हमारी पसंद ही कुछ खास है। वेलकम बैक, ट्यून करी शंदी आकाशवाणी FM रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। न्यूज ऑन AIR आप एंड लाइव स्ट्रीमिंग रे भी आपण माने हमको सुनि छथि। एंड आज होउची सावित्री व्रत, सो समस्त सावित्री करूथिबा अमर नारी मानंकु, अमर महिला मानंकु अनेक अनेक अभिनंदन आपण समस्तंकु। एंड सेथि पई हम सहित रेनबो SMS रे भी बहुत सारे लिसनर्स माने हम सहित जोड़ी हि जाइछंती ब्यूटीफुल लव लेटर्स सहित अनुरोध रगित हमको करिछंती। एंड एठी कहि रखुछि आपण मानंकु जे आपण माने जदि आपण मानंक मन पसंद रो गीत सुनिबा पई चाहौछंती व्हाट्सएप माध्यम रे, ऑफिशियल व्हाट्सएप माध्यम रे हम सहित कनेक्ट हे परिवे 8895254200 8895254200। ए नंबर रे आपण माने व्हाट्सएप करंतु, आम सहित कनेक्ट होंतु। को फिल्म रो गीत सुनिया पई चाहौ चंती, से फिल्म रो ना आ से फिल्म रो को गीतटी आपण को सुनिया पई अनुरोध करि चंती, तो से विषय रे आपण लेखि परिबे। आ शेष रे आपण कर ना एड्रेस जेमिते हेले भी लेखिबा को भूलिबेनी, जा द्वारा कि आमे जानि परिबो आमर को प्रिय श्रोता को जागारु आम सहित कनेक्ट हे चंती। तबे फिलहाल चलंतु आ देरी करिबानी, आरंभ करिबा आपण मानंकर रेनबो SMS शो को। ओके, सो आम सहित व्हाट्सएप रे कनेक्ट होती समीर संगीता पंडा तेलंगा पिंठ कटक्रु लिखले, स्मृति मैम नमस्कार, प्रति नमस्कार। आज पवित्र सावित्री व्रत यही गीतटी को से शुणापी चाहते सावित्री संगीता बहुत पसंद, मोर भी मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। सो यही गीतटी शुणेदे आम सावित्री सत्यवान समस्ते बहुत खुशी हबु, समीर संगीता बहुत बहुत खुशी हबु बोली लिखी। ओके थैंक यू सो मच आज मेसेज कर गीत निहाती भाव बजेबु। हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म रो गीत पति पति के लिए दे दे अपनी जान, पत्नी पति के लिए दे दे अपनी जान। स्वामी स्त्री अतुट संपर्क यही भल पाइबा यही विश्वास भितर ही गोटे संसार से माने गढ़ी था, सुंदर संसार टीए एवं अनेक वर्ष साथी रे से माने आगो को बढ़ी था, सुख दुख रे साथी ही था। तेणु तार ही प्रतीक यही सावित्री व्रत जहां कि जने स्त्री निजर स्वामी दीर्घ आयुष कामना कर मंगल कामना कर आज व्रत को से पालन कर। तेबे चलंतु आपणक मन पसंद गीत यही पहुंचला आपणक सावित्री पाखकू।

ओके सो समस्त श्रोता बंधु एवं आकाशवाणी समस्त कर्मकर्ता मानंको शुभेच्छा एवं अभिनंदन जणाइछंती प्रभात बळियार सिंह चंदन टुनी बांकी कॉलेज बांकीरु एंड लिखिछंती आज सावित्री अमावास्या एणु महासती सावित्री चलचित्र गोटे गीत शुणवाई अनुरोध करिछंती ए राती पाहाना अनुराधा पौडवाल कंठरू

सुनी चंदी आकाश पानी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सोई चली रेनबो एसएमएस समय वर्तमान सकाल 10:18 बजे 18 मिनिट आपण साथी स्मृति को आज सकाल शुणु आम सहित कनेक्ट होती व्हाट्सएप चिदानंद प्रधान हेमंत कुमार चांद चैतन्य चांद टुकुना पात्र माणियाबंध बड़म्बारू लिखले दीदी आज टॉपिक टी बहुत भल थिला बोली लिखिंट थैंक यू सो मच एंड सुनिया पई चाहिंट बाहुड़ी बेमो जगा बलिया चलचित्र गीत सात सुर परा गीत शुणा को चाहिंट आम सहित चैतन्य चांद प्रधान चिदानंद प्रधान हेमंत कुमार चांद चैतन्य चांद टुकुना पात्र माणियाबंध बड़म्बारू

ओके सो चलंतु नेक्स्ट एसएमएस आम सहित चैतन्य चांद प्रफुल्ल प्रधान कुआरपाल मणियाबंध कटक्रु आम सहित कनेक्ट होती लिखले जय जगन्नाथ पवित्र सावित्री अमावास्यापी आपण को सब् श्रोताबंधु मान प्रीतिभरा अभिनंदन एवं शुभेच्छा आपण प्रत्येक कार्यक्रम बहुत भल लगे से आपंक बहुत बहुत धन्यवाद लिखिंट आप हसे लक्ष टा आपण हसरे समस्त जितुंच थैंक यू सो मच नीलकमल चलचित्र गीत मोहम्मद रफी कंठरे बाबुल की दुआए लेती जाए गीत शुणापी चाहते एंड डेडिकेट करना भाईना बामदेव भाई बासंती भौणी और सबू फ्रेंड्स मानू।

लिसनर्स जुड़े हुए हैं, मतलब उड़ीसा के बाहर भी हमसे ऐप के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजिया। सो हमसे हमारे साथ न्यू दिल्ली से एरिया से जुड़े हुए हैं हनुमान मंदिर रोड मोती नगर न्यू दिल्ली एरिया में हमको सुन रहे हैं हमारे श्रोताए कविता मानसी अनिल गौरव अरोरा एंड फैमिली मेंबर हनुमान मंदिर रोड मोती नगर न्यू दिल्ली। ओके सो सुनना चाहते हैं लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ जय शनि देव।

सनी देव भगवान जी की जयंती है। दिल्ली में काफी रौनक बनी हुई है। केक काटेंगे, खाओगे क्या? बिल्कुल खाएंगे, अगर आप भेजेंगे तो जरूर खाएंगे। सो लाइन में रह के ये गाना हमारे श्रोताएं, तो चलिए पहुंचाते हैं मर्थ फिल्म का ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक।

क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना आपने रिक्वेस्ट किया है, मतलब किए थे, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. मैं भी बहुत इंजॉय की ये गाना सुन के. सो उसके बाद जितेंद्र नियाली माधव रु आम सहित कनेक्ट हो दिल जाली फिल्म र जिसके आने से ये गीत टी शुणापी चाहते फटाफट पहुंचाऊँ आप मन पसंद गीत आपको.

Okay, so next SMS को जीवा मासुक फिल्म रोग गीत सुनिया पई चाहि चंदी कौन हो तुम जो दिल में समाए जाते हो ए गीत टिकु लेखले गुड मॉर्निंग स्मृति अपा नमस्कार जय जगन्नाथ टाटा स्टील परिवार तरफ रु ओडिसा वासी को प्यार भरा नमस्कार आज पवित्र सावित्री अमावास्या रे समस्त घरणी मानको हमर हार्दिक शुभकामना ओडिसा रो घरणी मानकर स्वामी क लंबा आयुष एवं तांकर दीर्घायुष पाई से जमराजा दे थांतु एतिके हमर जमराजा को पाखरे प्रार्थना हम सहित ए प्रार्थना करिसेंती आवास सेन रोहित सेन।

गगना, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल गगना, मतलब भूली बिसरी गाना, ये सब सुन जब सुनते हैं ना पूरा एकदम से और भी एनर्जाइज्ड हम लोग हो जाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, ये गाना आपने रिक्वेस्ट की और हम लोग सब इंजॉय किए। तो हमसे जुड़े हुए हैं भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से और कुछ श्रोताएं जो कि हमको न्यूज ऑन एआईआर आप और लाइव स्ट्रीमिंग में शायद सुन रहे हैं। सुहागरात फिल्म का गाना लता मंगेशकर जी की आवाज में, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, ये गाना सुनना चाहते हैं क्योंकि आज सावित्री बट सावित्री का व्रत है। सो पसंदकर्ता दत्तरेगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा हमसे जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं जय जगन्नाथ जी, प्रिया जय स्मृति मैम जी, एफएम रेनबो कटक परिवार को बट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई।

ओके सो 10टा 50 ऑलरेडी हेगलानी समय सरी सरी जाउची आम सहित जोड़ी होती संध्याराणी सुतार मठ साही पटामुंडे केन्द्रापड़ शुणा को चाहती कावेरी चलचित्र गीत झुमी झुमी जाउची मन नाची जाउची गीत लिखले गुड मॉर्निंग स्मृति मैडम अ वेरी गुड मॉर्निंग तो पहुंचुची आपण मनपसंद सुंदर गीत कावेरी चलचित्र

तबे समय तो सारी सारी सूची हमसे जुड़े हुए हैं। कुछ श्रोताएं उड़ीसा के बाहर से नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े हुए हैं। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी हमसे जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं। सुपर आरजे स्मृति मैम जी, जय जगन्नाथ जी, थैंक यू सो मच। एंड बट सावित्री व्रत पूजन की सभी माताओं और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं जी, और सभी उड़ीसा प्रदेश वासियों को हमारे गोस्वामी परिवार की ओर से। प्रोग्राम और गीत हमें बहुत बहुत पसंद आ रहे हैं मैम जी, थैंक यू सो मच। आपको पसंद आ रहा है तो आप सुनना चाहते हैं गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का गाना पति परमेश्वर के सिवा मुझको, ये गाना लता मंगेशकर जी की आवाज में पहुंच रहा है आपका गाना आपके पास।

रास्तों के धूल से मत डरियो मुसाफिर, ये धूल कल तेरे माथे का चंदन बनेगी। जो आज हंस रहे हैं तेरे नाकामियों पर, जो आज हंस रहे हैं तेरी नाकामियों पर, कल उनकी तालियों से तेरी कामयाबी की गवाह बनेगी। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टूडियो घंटा रही है इस समय वर्तमान 11:04 रेडियो सबकर आपण माने समस्त रेडियो पाखर आज की पहुंची है जी आपण को म्यूजिकल हम सफर विश्वजीत सुनेबा पई आपण को ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गीत आउ कनेक्टेड रखिबा पई आपण को फेवरेट स्टेशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो सहित आपण को दिल से दिल तक रा सफर को उठके करिवा पई मधुमय मीठा म्यूजिकल आउ एनर्जेटिक आज की पहुंचे छी आपण को म्यूजिकल हमसफर विश्वजीत आउ समय वर्तमान इशारा देखी कहिलानी स्टार्ट करिया को पड़िबो आपनकर आ हमर हम समस्तनकर गुटे एमती स्पेशल प्रोग्राम जोथरे आमे किछि एमिति हस्तिंग विषय रे कथा हो जो माने आमो हृदय रे राज करचंती जो माने आमो एंटरटेनमेंट सेक्टर रे आमरो बहुत गुडिए भलो भलो मुहूर्त को निज कड़ा जरिया निज प्रतिभा जरिया रे आउट के सुंदर कर दी चलते अंधेरों से कह दो कि अपने औकात में रहे। अरे अंधेरों से कह दो कि अपने औकात में रहे, हम हौसले के चिरागों की जरूरत नहीं। जो रातों की नींद खोकर इतिहास रचते हैं, जो रातों की नींद खोकर इतिहास रचते हैं, उनके सफलता के कभी किस्मत के मोहताज नहीं। यही कथा को सुंदर भाव

यस, अगर दिल राजी है तो फिर क्या बाजी है, सब बाजी सब पलट देंगे हम, सारे मुकाबले को जीत जाएंगे हम। साथ ही सफलता शीर्षे थाई कि निजर क्यारेक्टर को जमा भी कंट्रोवर्शियल हवा को देना बॉलीवुड कंट्रोवर्सी ठारु निजो को आज पर्यंत तो बहुत दूरे की रखी चंदे विकी कौशल जने परफेक्ट जेंटलमैन भाव में निजर परिचय को सृष्टि कर विकी कौशल। 2021 मसीह बॉलीवुड सुपरस्टार अभिनेत्री कटरीना कैफ को व्यक्तिगत जीवन में से विवाह मध्य करिसेंति एवं निकट रे ए सुंदर जोड़ी जने पुत्र संतानर पितामाता मध्य हे सारिसेंति। तबे बंधु विकी कौशल संघर्ष आमको यह शिक्षा मिलू जे परिस्थिति जहां भी हो निजर स्वप्न उपर जो विश्वास थाए कठिन परिश्रम करिवारे जो जोश थाए ताले दिने ना दिने सफलता आपणकर पाद चुमिबो केही भी अटके परिबेनी। विकी कौशल से ब्यूटीफुल सिनेमा गुडीकर यात्रा आहुरी आगु को लंबु एवं बहुत सुंदर सुंदर फिल्म से आमको प्रेजेंट कर दियंतु। आज हैप्पी वाला बर्थडे आम आउ थे हैप्पी बर्थडे विश जन वाइंड अप करने इशारा दे समय कलाकार शो को ब्यूटीफुल ट्रैक सहित स्टे ट्यून्ड 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो को होता दिल से दिल तक।

साथी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को ट्यून करिछन्ते आपण चालंथे बे नेक्स्ट प्रोग्राम वीकली स्पोर्ट्स ओरिएंटेड इंग्लिश प्रोग्राम स्टम्प्ड रिले करी प्रचार करिवु आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल्ली रु आउ किछ क्षण मध्यरे स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक अगेन, ट्यून कर चुन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो को चुन दिल से दिल तक म्यूजिकल हम सफर विश्वजीत अच्छे आप मानक संग रे 12 बजे 28 मिनिट स्टूडियो घड़ी रे आ किछ कथा किछ गतर आज हमें कथा होचे गीतरे गीतरे प्रश्न आ गीतरे गीतरे उत्तर यार विषय रे आ ब्यूटीफुल ट्रैक्स गुडी को मध्ये सुनोची जो गुडी कर गीतरे गीतरे प्रश्न अछि सुरडे सुरडे प्रश्न अछि आ उत्तर भी सही सुरडे सुरडे अछि तबे साथी कहुतिले ना गला पूर्वरो जे बॉलीवुड रे जे ट्रेंड याठू केबे हेले पछरे नथिला आम ओडिया म्यूजिक यस आम ओडिसा रे जो म्यूजिक कंपोजर्स माने अछंती से माने मध्ये सब बेले एक्सपेरिमेंट्स करबा पई पसंद करथिले एवं सेथिरे नंबर 1 ने जे सब बेले थिले से होचंती आम समस्तक हृदय रे राज करथवा अक्षय महांती अक्षयमानिक गीत गुड़ सब कि नुआ एक्सपीरियंस गोटे नुआ एक्सपेरिमेंट सब देखा मिलता और गीत सुंदर प्रश्न उत्तर सिलसिला देखा मिलता गीत गुड़ प्रश्न प्रश्न नायक नायिका को किसी पचारुले नायिका उत्तर दूसरे के नायिका प्रश्न करुले नायक उत्तर दूसरे से प्रश्न उत्तर खेल को लेकिन दुईट गीत को आम सिलेक्ट कर शुणापी प्रथम गीत हूँ स्वप्न सगर चलचित्र जोटा कि आपण मैंने समस्ते जानते अनुराधा पोडवाल कंठ से बाटोई भाई जाऊ चकाही सुंदर गीत को आपण मैंने समस्ते बहुत भल पावे आपण मन भितर एवं से गीत अच्छी से सीन गुड़िक मन पड़ जाऊ आउ गोटे गीत हूँ जगह हाथ में पघारू टिके रोमांटिक गीत बहुत रोमांटिक गीत एमती गप चली कि आगे ये गीत अक्षय महांती और अनुराधा पोडवाल द्वैत कंठ से आपण मान दुईट ब्यूटीफुल ट्रैक ट्यून कर दिल से दिल तक।

ये प्यार कैसे होता है, क्या होता है, कैसे ये आगे बढ़ता है और कैसे ये मंजिल तक पहुंचता है, ये सारी बातों को लेकर जब गाना बन जाता है, वो गाना जिस्मो जान पे रह जाता है सारे उम्र के लिए, वो हमारे बहुत खास हो जाता है। सदी एमती किसी गीतर सिलसिला आज किसी कथा किसी गीतर आम कले आ सुनिले ए सुंदर सुंदर गीत जो गुड़िक भितर थिला प्रश्न आ जो गुड़िक भितर थिला उत्तर तबे समय तो इशारा देलानी किसी कथा किसी गीतर प्रोग्राम को सारिबा पई पड़िबा आ गुटी सुंदर गीत बजिबा पई स्कोप अछि मो पाखरे तबे मु आ कथा किसी न कहि आपन मानक पई ए गीतरे बजि दु छी ए गीतरे किंतु कुटी के क्वेश्चन अछि उत्तर होय त ए गीतरे तंग मिलि पारिनी सोनू निगम आ उदित नारायण को बर्थ এই গীত বহুত পপুলার এবং আপনার মানে মধ্য নিশ্চিত এই গীত সহ গুনগুনাইবে

0: ଏଇ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଟ୍ରାକ୍ ସହିତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ସିଲସିଲାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସମୟ ଦେଲାଣି ଇସାରା, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ୟେସ୍, ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ 200.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ, ଆଉ କହୁଥାନ୍ତୁ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने यह बात कही।
2: If you heard me earlier,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
2: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और नॉट।
1: सेना प्रमुख की ये टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिस

0: में कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी से 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Excitement is building among the Indian diaspora in the Netherlands as Prime Minister Narendra Modi prepares to address the community this afternoon during his official visit. Thousands of Indian community members are expected to attend what organizers are calling a historic address. The event will be a highlight of the Prime Minister's trip to the country. Prime Minister Modi reached the Netherlands late last night to a warm reception. Members of the Indian community, representing different age groups, regions and faiths, gathered to welcome him with traditional dance and musical performances. The venue echoed with chants of Modi Modi and Vande Mataram as he arrived.
2: Modi Modi Modi Modi Modi Modi ji Bharat Vande Mataram Bharat Vande Mataram.
1: The community event is expected to focus on India-Netherlands ties, the role of the diaspora, and India's global outreach. Indian Army Chief General Upin Dwivedi today said that Pakistan must stop harboring terrorists and operating against India. Speaking at Sena Samvad in New Delhi, Mr. Dwivedi said that if Pakistan continues these activities against India, then they will have to decide whether Pakistan wants to be a part of geography or history.
3: I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not.
1: In a significant move to strengthen the law,

वेलकम बैक टू करिचंद 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कहउचंदी दिल से दिल तक। तबे साथी आपनको फोन रे आपनको मोबाइल फोन रे हो बा लैपटॉप रे हो बा आपनको चारि पाखरे वर्तमान गोटे एमिती टूल डेवलप हे हे चली छी गोटे एमिती जिनसा हम वर्ल्ड रे डेवलप हे हे चली छी जहां पई हमें जति की खुशी होछु सेति के टिके टिके वरीड भी होछु हना से जिनसटी हमर प्रायत काम वर्तमान करी करी आसलानी टेक्नोलॉजी जो हमें कहुतले से टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब काम धीरे धीरे से करबा को आरंभ करलेने एवं ता सहित क्रिएटिव वर्ल्ड रे मध्य धीरे धीरे से निजर आधिपत्य देखेबा को लागिलानी माने मु कहूची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा बा एआई कथा जहां को डेवलप करची एई मानिस एआई बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान वर्ल्ड रे केते ग्रो करूची आ आपन को चारि पाखरे आमो इंडिया रे केते ग्रो करूची ए बिषय रे आपन निश्चय जानि सारिबेनी आपन को फोन रे हो आपन को लैपटॉप रे हो अदर कोनोसी मोबाइल डिवाइसेस रे हो विभिन्न एप्लीकेशंस रे हो विभिन्न वेबसाइट्स रे हो सबु जगह वर्तमान एआई रो बोलबाला बहुत अधिक बढ़ी जाइछि। ऑफिस रे आपनकर कंप्यूटर स्क्रीन थारु आरंभ करिकि मोबाइल रे आपनकर स्क्रीन रे किछ गोटा काम करबा हो किछ गोटा नुआ क्रिएटिव जिनसटे भाबिबार कथा हो किछ गोटा आइडिया नबार कथा हो बा फोटो के एडिट करबार हो कोनसे वीडियो को एडिट करबार हो सबु क्षेत्र रे वर्तमान एआई आसी एंट्री करि जाइछि। ए जो एआई

या विषयरे बहुत अधिक सचेतन हेबार आवश्यकता अछि एवं ता सहित या विषयरे अनेक किछि जानिबाकु मध्य पड़िबो नहले बेळ थाउ थाउ सावधान नहले लेडी गुड़ कोहुणी को बोही गला परे आउ कांदिले किछि हबनी। बहुत सुंदर कथा लिखिछन्ती से कहबा पई चाहुचन्ती जे वर्तमान एआई को नै कि जो जो छोटे छोटे सब आह्वान देखा जाउची आम मानक भीतर गोटे छोटे भय भी रही जाइछ जे एआई को यूज करके आमर के किछि क्षति भी कर दे परबो ए सब जिनछ गुड़ का आगु को बहुत सुंदर भाव में मैनेज हेही चालिबो बोली आमे भाबुचे आशा करछे आमे पॉजिटिव रहिबा किंतु ता भीतर आमे सचेतन हबा जहां कहिछन्ती से आमे या विषय जानिबा दरकार सचेतन हबा दरकार सचेतन हेले आमे जानिले ई आम पई गोटे बहुत बड़ विपद को आम रोकी दे पारिबा आम निजे मैनेज कर दे पारिबा। खूब सुंदर भाव में मत देखते साथी आपण जल्दी जल्दी फोन उठातु आसएमएस करतु आमको एफएमआरसी लिखिकी 0949596321 आम नंबर में मत पठे पारे जे एआई विषय ज्ञान एवं सचेतनता आमपाई वर्तमान केते जरूरी एआई विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भीतर आम मैंने जानवा के जरूरी सहित आम सहित व्हाट्सएप कनेक्ट हो पारे मेसेज करट्सअप नंबर हूँ 8985254200 स्टेट 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप

0: बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
6: If you heard me earlier,
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो

0: कोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
2: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
3: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
2: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। मुख्य उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो

0: सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सेफेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यतबले जाए कार्यक्रम रिले करी प्रचार करथुरु आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक।
2: यहां खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
3: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
2: यहां होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
3: मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
2: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
4: कौन रीमा घरे सोलर लगे देला?
5: हाँ मधु अपा, एबे आउ बिजुली बिल पाई चिंता नहीं।
4: चिंता नहीं माने?
5: हाँ अपा, सोलर करी देले मासक 300 यूनिट पर्यंत बिजुली बिल बंची जीव।
4: सतरे?
5: खाली सेती किनु? हाँ अपा, सौर शक्ति व्यवहार कले परिवेश भी सुरक्षित रहिबो।
6: आज्ञा हाँ, पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 1,38,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती। pmsurjaghara.gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।

0: भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
1: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल, डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

वेलकम बैक अगेन ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो को चंती आमसे त दिल से दिल तक देशभक्ति रा भावना या विषय आज कथा होचे आ सुररे ताळरे देशभक्ति रा कथा विषय रे कथा होचे देशभक्ति रे भावना उद्रेक करिवारे आउटिक अधिक उज्जीवित करिवारे संगीत ग्रहण कर गुटे बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका आ ए रेडियो रे देशपय गीतटी जते बळे बाजी उठे आम वीर जवान मानन को मनोभरे अदम्य साहस भरी जाए गर्वरे छाती फुली जाए दूर पहाड़ उपरे निरोला जागारे आम सैनिक माने जेबे विजय उत्सव को आहुरी अधिक आनंदर सहित मनेबा पई बाहरंती सेतबेले सांगरे थाई एही सुररे तारे देशभक्तिर गीत विदेश रे जेबे आम प्रवासी मानन को ग्रहण रे देशभक्तिर गीतटी बाजे सतरे जेमती मन प्राण गर्वरे फुली जाए क्रीड़ा क्षेत्र में जब आम प्रतिभा माने देश विदेश में विजयी हूं परस्पर मध्य गुंजरित हो जाए देशभक्ति संगीत क्रिकेट फिल्ड ठार आरंभ कर हॉकी पैवेलियन पर्यंत दर्शक माने भी गांती सहित कौन चक दे इंडिया।

जैसे कि पहुंच जबे सुरीला आफ्टरनून ने आपनकर आफ्टरनून को आउटिक अधिर सुरीला करबा पई ब्यूटीफुल ट्रैक सहित ब्यूटीफुल कथा सहित आपनक आफ्टरनून को खास करबा पई तबे मते आज दियंत विदाय साथी रहिली नमस्कार।

बैक सती थी उनको इच्छा 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल दाव मोतमान शो चली छे सोरेल आफ्टरनून नाउ मो छे आपन को रेनबो सती शुभश्री आज आपन को सती रे म्यूजिकल ब्रेक पूर्व रो मु कहुथिले जे केमिति आमे निजो माइंड रो ठीक भाबरे ख्याल रखि पाडबा माइंड को ठीक रखिबा को हेले साथी हमको निजो को पॉजिटिव एटीट्यूड रखिबा को हबो प्रथमे निजे हमें अन्य ठरो कम बोली मैक्सिमम टाइम कहि बसो निजो को बुझे बसो किंतु सेईटा को आगो बंद करबा को हबो फर्स्ट सेई कथा को निजो को कहबा बंद करबा दरकार काहेकि ना आमे समस्ते निजे निजो वे रे यूनिक अन्य सहित कंपेयर करबा होची हमरो सबो ठरो बडो मूर्खामी अच्छा कहिले खजुरी गछरे केबे कोन आंब फळी परिबो की ना पणस गछरे केबे ताळ फळीबो एटा इम्पॉसिबल ना सेमती ही साथी हमरो योग्यता अनुजाई आमे काम करि परबा जदी अन्य सहित निजो को कंपेयर करि बसिबा तो केमती होबो सो प्रथमे निजो यूनिकनेस को आपण आगो चिन्हंतु निजो माइंड को सबो बेले किछ न किछ पॉजिटिव अफर्मेशन कोहंतु आमो माइंड को आमे जतिके ट्रेन करिथाउ जो वे रे ट्रेन करिथाउ माइंड बे सेमती ही हे जैथा सो माइंड को सबो बेले पॉजिटिव रखिबा को चेष्टा करंतु लाइफ रे साथी हमरो बहुत झड़ झंझा आसे आ सेई टाइम रे लाइफ हमरो टेस्ट नै था जदि माइंड को पॉजिटिव वे रे ट्रेनिंग देइथबा ना ताहले लाइफ रो सेई टेस्ट बेले से भांगी न जाय स्ट्रांगली सेई सबो झड़ को सामना कर पाइबो सो माइंड को माइंडफुली ट्रेन करंतु

वेलकम बैक सती ट्यून कर शांति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक वर्तमान शो चली छे सुरीला आफ्टरनून नमो आज आपन को रेनबो साथी शुभ छे आज आपन को साथी रे आज हमे कथा हो छे जे निजो माइंड को हमे किमती ठीक भाव रे निजरो माइंड रो ख्याल रखि परबा निजे निजो को फर्स्ट बिलीव करबा आरंभ करंतु सकाळ उठिबा मात्रे निजो को आगो कहंतु I am the best. I can do it. Empty kichi kichi positive thinking daily nijoku kahiba dwara nijoro confidence high hei paribo. Au confidence jodi high rahila na baki ta kichhi ko bi dar nahi. So nijo upare confidence pura 100% rakhantu. Au koti important kotha. कॉन्फिडेंस हाई रखिबा माने साथी एया नुह जे आपण केबे थकी जिबेनी ना साथी टायर्ड फील करबाटा तो नॉर्मल नेचुरल कथा पुरा पूरी एटा नेचुरल ही कॉन्फिडेंस रखिबा माने नुह जे आमे सबो सिचुएशन रे एमति की जे कोनोसी परिस्थिति रे बे निजो को स्ट्रांग देखे हबा ना साथी एमति चमा बिन हो आमो माइंड बे बेले-बेले एत्ते सबो काम करी करी आमो बॉडी भली थकी पड़े ताको भी सेथि भई मझेरे मझेरे टिके रेस्ट दरकार हेतै सो जेते बेले माइंड को रेस्ट दरकार होची ताको जथेष्ट जेति की दरकार सेति की रेस्ट दियंतु काहे कि ना सीए ठीक रहिले आपन भी ठीक रहिबे हेल्दी माइंड पई सफिशिएंट नींद मध्ये आवश्यक आमो फोन रो बैटरी डाउन हे गले ताको जेमती चार्जिंग रो दरकार हे थाए सेमती आमो माइंड को भी चार्ज करबा दरकार हे थाए आ सेईटा केवल मिली थाए भलो निदरु से पई सफिशिएंट सोंतु प्राय 7 रो 8 घंटा सोंतु जहा फल रे आपन को माइंड एक्टिव हे रहि परबो बॉडी वही खेले ताको जिम्ती डॉक्टर एंड मेडिसिन रो दरकार पड़ी था सेम थी आमो माइंड वही खेले ताको नेचर रो दरकार ही था सो टिके दिल्ली किच्छ समय कौन सोच के रहने रे चालन तो बोलन तो किच्छ समय फ्रेश एयर रे भी बोलन तो मॉर्निंग वॉक करन तो जदि मॉर्निंग वॉक ना कर पारु छंदी ताहले किच्छ समय इवनिंग वॉक करन तो साथी आमो नेचर आमो प्रकृति परिवेश होची गोटे साइलेंट हीलर सो नेचर रे किछि समय निजरो समय बितांतु जहा फळ रे आपनकर माइंड काम आउ कूल रहि परबो आउ आपन जहा सब डिसीजन नउचंती से सब इफेक्टिव हे परबो आउ सपोर्ट हो इम्पोर्टेंट कथा माइंड को काम और कूल रखिबा को हेले भलो भलो गीत सुनंतो आ सेईटा केवल हेई परबो जेते बेले आपण ट्यून करी रखिथिबे हमको माने ट्यून करीथिबे जेते बेले 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटको आ हम सहित

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम और मैं हूं आपका आरजे चेतन। स्वास्थ्य विभाग का पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा अपने मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों और महिला स्वास्थ्य केंद्रों की श्रृंखला के जरिए जन्म से 5 साल तक के शिशुओं और 64 साल से कम उम्र की महिलाओं को स्वास्थ्य संवर्धन और रोग रोकथाम सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवा में शिशु स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और गर्भाशय ग्रीवा की जांच शामिल है। शिशुओं के समग्र जैसे शारीरिक, संज्ञात्मक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों में एकीकृत शिशु स्वास्थ्य और विकास कार्यक्रम लागू किया गया है। पालन पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों के भाग लेने वाले सभी शिशुओं के माता पिता को स्वस्थ शिशुओं और उनके बेहतर लालन पालन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से उन्हें अवेयरनेस देना, सूचनात्मक पुस्तकाओं, ऑडियो विजुअल संसाधनों, वेबसाइट, रिकॉर्ड की गई हॉटलाइन, पालन पोषण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत परामर्श के रूप में प्रसवपूर्व अवधि के दौरान और फ्री स्कूल वर्षा के दौरान शिशुओं के विकास, शिशु देखभाल और पालन पोषण पर माता पिता को प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जरूरतमंद माता पिता को सहायक सेवाएं प्रदान की जाती है। इनमें स्तनपान करने वाले माँ के लिए स्तनपान कोचिंग और सहायक समूह, प्रसवकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्या या विशिष्ट मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं वाले माता पिता के लिए मदद कार्यक्रम, नवजात और शिशुओं को टीबी, हेपेटाइटिस बी, पोलियोमाइलाइटिस, डिफ्थीरिया, टेटनस, खांसी, न्यूमोकोकल संक्रमण, चिकन पॉक्स, मम्स, रुबेला और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाने के लिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा आयोजित नियमित समीक्षाओं की श्रृंखला शामिल है, जो स्वास्थ्य और विकासात्मक संबंधी समस्याओं वाले शिशुओं की समय पर पहचान और रेफरल प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। इसमें नवजात के लिए पहला स्वास्थ्य परामर्श, शिशु के विकास मानकों की अवधिक निगरानी, सुनवाई और विशिष्ट आयु में प्री स्कूल दृष्टि स्क्रीनिंग शामिल है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र पूरी गर्भावस्था और प्रसव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सार्वजनिक अस्पतालों के प्रसूति विभाग के सहयोग से एक व्यापक प्रसव पूर्वक साझा देखभाल कार्यक्रम संचालित करता है। प्रसव के बाद सभी महिलाओं को प्रसव बाद जांच और परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक पर सलाह दी जाती है। केंद्र प्रसव बाद माताओं को सहायता समूह और व्यक्तिगत परामर्श में अनुभव साझा करता है। इसके माध्यम से जीवन में बदलावों को अनुकूलित करने में भी मदद करता है। बच्चा जनने की उम्र वाली महिलाओं को उचित गर्भरोधक तरीकों का परामर्श और पर्चा प्रदान किया जाता है। परामर्श उन ग्राहकों को भी दिया जाता है जिनको बांझपन की समस्या होती है और विशेषज्ञों के पास रेफरल की उचित रूप में प्रबंध किया जाता है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा जांच परीक्षण प्रदान करता है। महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और जीवन के विभिन्न चरणों में उनके स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना लक्ष्य है। महिला स्वास्थ्य केंद्र 64 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण कार्यक्रम

0: प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। स्वास्थ्य शिक्षा, परामर्श, शारीरिक परीक्षण और उपयुक्त जांच परीक्षण प्रदान किया जाता है। मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र में सत्र के आधार पर महिला स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान की जाती है। कार्यशालाओं और सहायक समूह के रूप में शैक्षिक कार्यक्रम नियमित रूप से मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ WHCS में विभिन्न सेवा सत्रों में आयोजित किया जाते हैं। शिशुओं और महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किया जाते हैं और जीवन के विभिन्न चरणों में उनके स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी अपने कम्युनिटी हेल्प के बारे में। तो ये कार्यक्रम फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: सुनिले प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे ट्यून कहते 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक दिल से दिल तक।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: हेलो
1: नमस्कार, के कहुले कौले
0: नमस्कार, मु कटकुर कहुले कपुरिया लेबर कॉलोनी।
1: के कहुले
0: कटक ठाकुर।
1: नमस्कार, स्वागत करछि आजर डायलिन लाइव चैट चैट को।
0: हां,
1: आजर टॉपिक ऊपर कोन कहबे, को एमती फिल्म थिला जहार फर्स्ट डे फर्स्ट शो आपण देखि चंती?
0: हुकूमत।
1: आउ
0: आउ ओडिया कोन यार, सो सब हुकूमत रे बहुत

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: जीएसटी काउंसिल निजर 56वीं बैठक में हेल्थ केयर द्रव्य को सस्ता करने द्वारा आम देशर बृहत जनसंख्या को एक आश्वासना मिली। भारत मधुमेह रोगी दैनिक जरूरी ग्लुकोमीटर एवं स्ट्रिप्स उपरे जीएसटी दर ह्रास कर दी। डाक्तरी चश्मा उपरे जीएसटी ह्रास कर ब्रेस्ट कैंसर सहित आस्थमार उन्नत चिकित्सा केतक दरकारी औषध थर्मोमीटर डायग्नोस्टिक किट्स उपरे भी ट्याक्स दर ह्रास करा जाएगी।

श्री रामचरित मानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है। कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा का पाथेय नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से राम कथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगलकारिणी है। वेद मत और लोक मत इसके दो किनारे हैं।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
0: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाए छी। बस, ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाए छी, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मैन्युफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर को समस्या कम हो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रही। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र में कौनसी परिवर्तन करा जाए नहीं। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दरर लाभ उठाई पारिबे, जहाद्वारा ए जानगुड़ी को सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रही जिवो।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: ఇంకొచ్చింది 100.4 ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో కటక్ తెలిసి తెలుతా ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:35 ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସର। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସରରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍। ଯଦି ଆଜି କାହାର ବର୍ଥଡେ କିମ୍ବା ଆନିଭର୍ସରୀ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିବେ ନିଜର ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍ ଆମର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସର ସେଗମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। କେମିତି ନିଜର ୱିଶେସ୍ ପଠେଇବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ सिंपली साथी आमको एसएमएस बा व्हाट्सएप करे। एसएमएस करबा पई निजो फोन रो मेसेज बॉक्स को जाई टाइप करंतु एफएमआर सी टिके स्पेस दियंतु जहां को मेसेज टी पठिबा पई चाहू छंती तांको नाम ओ एड्रेस लिखी निजरो मेसेज टी निजरो विशेस लिखी तापर टिके स्पेस दियंतु तापर निजो नाम ओ ठिकाना लिखी पठे दियंतु आम ऑफिशियल नंबर 09495963210 एवं व्हाट्सएप नंबर टी रही छी 8895254200। ଏହି ଦୁଇଟି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଏଥିରେ ନିଜର ମେସେଜଟିକୁ ପଠେଇ ପାରିବେ ଆଉ ନିଜର ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍ ଜଣେଇ ପାରିବେ ପଠେଇ ପାରିବେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ।
1: ପତା ହେ ଶେଖର ଇନସାନ କୋ ତକଲିଫ କବ ହୋତି ହେ जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

प्रार्थना साथी बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर गुड विशेस पई आउ आपणक गुड विशेस आपणक प्रियजन मानक पाखरे मु पहुचे देली बहुत बहुत धन्यवाद आम कार्यक्रम रे शामिल हेतवारो।

तेबे आजि संध्या आसरे जो साथी माने आम सहित कनेक्ट हेथिले जोडी हेथिले निजर गुड विशेस समस्तक सहित शेयर करथिले से समस्तक आम तरफ रु आम कार्यक्रम तरफ रु ढेर सारा शुभेच्छा एवं धन्यवाद।

0: ট্যুন করছেন 100.4 আকাশবাণী এফএম রেইনবো কটক দিল সি দিল তাক। আমার পরবর্তী কার্যক্রম রিলে করে প্রচার করছ আকাশবাণী দিল্লির কিছুক্ষণ মধ্যে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে বিশাল শর্মা। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के

0: के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में

0: शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: की साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये अहंकार किसके लिए।

लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी,

कुछ ख्वाहिशें अधूरी, कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इन्हीं सवालों के जवाब है जिंदगी।

प्रथम मेसेज टी आसी पहुंची जाइछि। मेसेज टी करिछंती कैलाश बेहरा, कामिनी बेहरा, कंतोल आठगढ़ रु समस्त को नमस्कार जनाइछंती। आज सावित्री अमावस्या रो पवित्र संध्यारे समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा जनाइछंती। सुनिबाकु चाहिछंती धर्म सहिले हेला कथा चित्र रो गोटे सुंदर गीत टी। एवं परे परे आ गोटे मेसेज आसी पहुंच जाइछि। मेसेज टी करिछंती कंतोल आठगढ़ रु निर्मला बेहरा, संतोष बेहरा एवं नातुणी आद्यासा। साथ ही पहुंचेली आपण मानक पसंद रो गीत बैक टू बैक।

100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिलसी दिलदाव वर्तमान शो चली रेनबोस मिस और रेनबोस मिस परवर्ती मेसेज टी परमानंद बेहरा मधुमिता दली झीओ शिवानी चौद्वार शंकरपुर परपरे आउ गोटे मेसेज टी आसी मेसेज टी को करिसंती लक्ष्मी एवं सरस्वती माणियाबंध बड़म्बा कटकरु चलंतु साथी सुनिनबा आपनको पसंदर गीत बैक टू बैक

क्वेश्चन थी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेनबो एसएमएस रे परवर्ती मेसेज टी कहिछंती सुनील कांत महंती सिलु एवं आकृति देवकली संखत्रास कटक रो समीर खटुआ नरसिंहपुर केन्द्रापड़ा रु नेक्स्ट मेसेज टी कहिछंती नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुड़ा गंजाम रो ससधर नायक राजवाटी नगर आठगढ़ रु साथी पहुंचे आपण मानक पसंद गीत बैक टू बैक।

ट्यून करछन दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक वर्तमान रेनबो एसएमएस रे नेक्स्ट मैसेज टी करछन ती हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्रमणि वर्मा नोखेलाल वर्मा भाटापरा छत्तीसगढ़ रू नेक्स्ट मैसेज टी करछन ती सोमनाथ साहू जिकरण पटामुंडे केन्द्रापड़ा रू

0: ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ରେନ୍ବୋ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମାଚାର ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता CBI की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान

गुड मॉर्निंग अब हमारे ट्यून कर शांति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक श्रीदेव मित्र अच्छे आपंक सहित एंड आज आप केन्द्र कौन कार्यक्रम शुणीपर मुहती से विषय आपको जन रखुच्छी आमर स्वास्थ्य आपंपाई रही सका सतटा बाजे 10 मिनिटे और एज विषय वस्तु रही आधुनिक अस्त्रोपचार निश्चित कर भूमिका आषय कह डॉक्टर अनंग मोहन द्विवेदी सका सतटा बाजे 50 मिनिट्रे रही शुभ सका कार्यक्रम और मॉर्निंग मेलोडी सका 8:30 सका 9 संध्या 5:02 डायल इन लाइव चिटचाट निर्धारित विषय फोन जोगे आपर मतामत को शेयर करें दिन 10 रही दिन 10 एवं राती 10 आपण रही रेनबो एसएमएस कलाकार दिन 11 दिन 11:30 शुणीपर पुराणा हिंदी कथचित्र गीत दिन 12 रही कार्यक्रम किछि कथा किछि गीत दिन 1:10 आज चर्चा निर्धारित विषय व्हाट्सएप एसएमएस मध्यम निजर मतामत को शेयर करें पुराणा ओडिया कथचित्र गीत शुणीपर 2:45 मो देश रही अपराह्न 3 अपराह्न 4 रही सुरीला आफ्टरनून गोस्वामी तुलसीदास श्रीराम चरित मानस 18 भाग शुणीपर संध्या 6:10 एवं भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना संध्या 6:30 एवं संध्या आसर रही संध्या 7:25 राति 8 रही गीतर मितर एवं अभुला स्मृति रही 9:15 आशा कर प्रति प्रोग्राम निहाती भाव में भल लगे और आपण मन छुआ करने प्रति आर्जी चेष्टित रेष्टा करें सो एक कथा सहित आज प्रोग्राम डिटेल्स आपरे पहुंची सारी आई क्षण भितर आपणीपर आंचलिक संवाद जहां रिले कर प्रचार करू आकाशवाणी कटक केन्द्र रो

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको HPV टीका मध्ये दे दियो। एही टीका मो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रे

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

सहज कथा प्रथमतः सकाळ शीघ्र उठंतु आ एबे जेतु खरा दिन चली छि बहुत जल्दी खरा आसी जाउ छि सेथि पई सकाळ सकाळ जदि आपण उठि जाउ छंती अराउंड 5 ओक्लॉक जदि आपण उठि जाउ छंती तेबे सकाळ रो पवन रे ही अलग शांति थाए सेइ फ्रेश एयर मन को पॉजिटिव एनर्जी रे भरि देई थाए आ द्वितीयतः उठिबा परे पानी पियंतु निज शरीर को डिटॉक्स करि थाए पानी आ दिन को एनर्जेटिक करि रखि थाए पानी तेनु उठिबा मात्र ही पानी पियंतु आउ हां तृतीय कथा टी होची किछ समय एक्सरसाइज बा योगा करंतु बा टिके चालीबा को जांतु मात्र 15 मिनिट आपण जदि चालु छंती बा दौडु छंती ताले ए सब अभ्यास भी आपण को मन को फ्रेश कर दिए आउ हां चतुर्थ रे आसे ग्रैटिट्यूड सकाळे निज जीवन रा भल कथा पाई भगवान को सब बल पाई धन्यवाद दियंतु पॉजिटिव थॉट सह दिन आरंभ कले दिनटा सुंदर हे जाय एंड फिफ्थ रे आसे हेल्दी ब्रेकफास्ट सकाळर खाद्य केबे भी स्किप करंतुनी हेल्दी ब्रेकफास्ट हेउची सारा दिनर एनर्जी बूस्टर सेथि पाई निजर ब्रेकफास्ट को मध्य हेल्दी करंतु हां जीवन रे धन सक्सेस फेम सब दरकार किंतु जदि शरीर आ मन सुस्त नहीं तबे सब किछि अधा अधरा लागे सेति पाई प्रत्येक सकाळ नुआ नुआ आशा आ नुआ एनर्जी सहित आरंभ करंतु आ प्रतिदि सकाळ को स्वागत करंतु सुनथांत देवमित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे बे पाई ब्यूटीफुल संगीत ह्यूमन सागर को कंट्री अपन समस्तन को पाई स्टे ट्यून्ड

गीत परिपूर्ण स्वागत आपण माने ट्यून करी शानी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक दिल से दिल तक कोन दिल से दिल तक कृते मित्र आज आपणक सहित शो नी की शुभ सकाळ रो खरा दिन रो तापमात्रा दिन को दिन बढ़ो छी आ सकाळ 9टा हे गले इमती लागो छी की जेमती सूर्य देव सीधा सड़क फायर मोड रे आसी जाई छथि आ गरम रे सबटो बड़ चैलेंज हो जे निज को हाइड्रेटेड रखबा ताहले आज आम जानवा आम केमती ए खरा दिने निजको हाइड्रेटेड रखिबा यस गरम दिन रे आम शरीर रो बहुत पानी स्वेट आकार रे बाहर जाय थे आ जदी ठीक परिमाण रे पानी न पियु ताहले वीकनेस हेडेक डिजीनेस भली बहुत प्रॉब्लम आरंभ हो जाय थे तेनो ए दिन मानंग रे बेसी पानी पियंतु खाली सोस लगे मात्र नुह दिन सारा अल्प अल्प कर सका उठी गोटे ग्लास पानी पियंत जहां दिन को आपण पूरा फ्रेश बनई था हाँ नेचुरल ड्रिंक्स को हाँ कहतु पणा है लेंबू पानी है छाछ है बेलपणा है यू को पीवा को हैबिट कर दिंतु कहीं शरीर को आपण थंडा रखी था बेले बेले टेस्ट रे टिके उणा हो जाए था किंतु शरीर को शरीर पर बहुत हितकर होता है आउ हाँ वाटर रिच फ्रूट्स खातु जमीती कि तरबुज काकुड़ी खरबुजा ये भाई सब फल ना शरीर को हाइड्रेटेड रखे बहुत हेल्प करें आउ जदि आपण पूरा गरम खरार बाहर ताहले सावधान रुहतु मुंडे गामुछा किंबा कैप पिंधतु यह सहित पानी बोटल भी नवा को भूलतुनि आउ हाँ कोल्ड ड्रिंक्स आउ जंक फूड ए खरा दिन मान अवॉइड करंतु आउ कोल्ड ड्रिंक्स खेने को पाए ठंडा लगी पारे किंतु शरीर को डिहाइड्रेटेड कर दिए सेथिपाय ए सबटु दूर रहंतु आउ आमे सब बले प्राय तो काम रे व्यस्त रहउछु किंतु निज शरीर रो ध्यान रखिबा मध्य इक्वली इम्पोर्टेंट आमर काम सहित कारण ए शरीर ही आम स्वप्न पूरण रो सबटु बड़ा साथी सेथिपाई ए गरम रे निज को कूल आउ फ्रेश आउ हाइड्रेटेड रखंतु आउ हां वाटर इज नॉट जस्ट अ ड्रिंक इट्स लाइफ ए कथा को बिल्कुल भी भूलंतनि ए कथा सहित असंतोष नि भाव गुडी ब्यूटीफुल सा ट्रक केवल आउ केवल देव मित्र सहित 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक दिल से दिल तक क्रिस सोनू निगम का कंठ रे स्टे ट्यून्ड

सुनिश्चित है अपने माने देवो मित्रा को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का टिक दिल से दिल तक रे यस आओ शो चालीस की मॉर्निंग मेलोडी राव आमे कथा हो चेस से 90s जो एल्बम गीत गड़े को नेकी हाँ आज जितने मॉडर्न म्यूजिक आसो किंतु 90s जो से कैसेट चुकरो गीत सुनीले आज भी लागे जीवन कितने सुंदर थेला हाँ समय बदली जाए टेक्नोलॉजी बदली जाए किंतु किसी गीता किसी स्मृति सब बड़े हृदय रे जीवंत है कि रह जाए हाँ मु आज इमती गोटे गीत विषय रे कहू छी जो गीता केवल गीता नुह गोटे अनुभूति आ जीवन रे गोटे यात्रा हाँ बयस राजपथ रे गीता टी शक्ति मिश्र द्वारा ये जो गीता टी सतरे मोर तो ऑल टाइम फेवरेट आज भी मु जेबे भी सुने गीत एमिती लागे जेमिती मु सेई बयसर राजपथ रे अटकी जाई छे हाँ से सुमधुर कंठ से भावना से गभीरता से सब किछि जेमिते गोटे नॉस्टैल्जिक मेलोडी हे थाए आज भी सुनिले मन कोठी ना कोठी अटकी जाए 90s एरा रो उड़िया एल्बम गीत माने प्योर इमोशन हाँ और सही जुगरे शक्ति मिश्रा गीत भी थिला प्रत्येक हृदय धड़कन

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: ଦିନେ ଦିନେ କଥା ହେବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରଖିବି ଆଉ, ତେଣୁ ସିଏ ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ମହାଟି ଆଉ।
1: अच्छा समीक्षा जो भी अच्छा बहुत खुशी से रुहत सब आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद कल कर नमस्कार। सतरे आज विश्व परिवार दिवस जिते आप परिवार कथा कहते किए क्या कितने भल पाती कहते कि चलते आज गोटे प्रमिज करवा जिते व्यस्त हेले भी दिन को अति कम रे किसी समय निज पर रखा कारण जीवन रु बड़ वेल्थ हूँ फैमिली। हाँ ଆଉ ଘର କେବେ ମାଟି ଇଟା କାନ୍ଥ ଏଇସବୁରେ ତିଆରି ହୁଏନି, ଘର ତିଆରି ହୁଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ସ୍ନେହରେ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା।

0: सुनिश्चित है अपने मनी तब मित्र को 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो का एक दिल से दिल तक क्रिया और दिल से दिल तक क्रिया शो चल छे डाल इन लाइव रो चलन तो देखिबा मते नेक्स्ट के डाल कर शो अंदर से कौन कहो छन दे आज रे टॉपिक को नीकी हेलो
1: हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग अपा जय जगन्नाथ
0: नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ के कहो छन दे कोठ कहो छन
1: बलराम बेरा कहतले आ खुर्दा बल्लगढ़ ब्लॉक आरिक वांग्राम डिछो सैरु
0: केमती अछन दे
1: बहुत बढ़िया भल अच्छे बहुत भल भवन आप भल रखता है जगन्नाथ आप आशीर्वाद सब आप पे था भल समस्त आप
0: आज टॉपिक ऊपर कौन कहे
1: मेन सदस्य नंबर वन रखी माँ को नंबर टू रही बापा बाकी सब फैमिली मेंबर भाई भौनी मामु माई मान समस्त रखी आज टॉप
0: अच्छा समस्त प्रिय ना कौन मामु घर सब प्रिय किए
1: माई मोर प्रिय
0: माई माई ताले जो आमर ढग अच्छी मामू मत माइले माई मत धरले से हिसाब से माई बोध सब बड़े कम करती माई पसंद ना कौन पिला बल ताले माई कर बहुत स्नेह श्रद्धा आप सहित अच्छा कितु माई कर चर्चा सब बड़े रुहे ना कौन पर भल पाइब स्नेह श्रद्धा एम सब भरी था बहुत बहुत धन्यवाद कल कर नमस्कार जय जगन्नाथ अपन भी कल कर पारे अंदर नंबर 0671230353 शेयर कर सब प्रिय व्यक्ति जनक आप किए चल देख नेक्स्ट कलर किए अच्छा एंड सी कौन कह हेलो
2: नमस्कार जय जगन्नाथ
0: नमस्कार जय
2: जगन्नाथ राजेश नायक फ्रॉम चर्चिका बाजार जगतसिंहपुर
0: अच्छा आज टॉपिक ऊपर कौन कहे
2: टॉपिक आज से धन्यवाद देवी आज टॉपिक ऊपर कहबी

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य देई दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंकु पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछि असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रु रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

सुनिश्चित अपन मने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रिदिव मित्र आज आपन को सहित शो नी किरण वॉइस में स्ट्रेच चलन देखबा पर परती एसएमएस के कोड पटी चंदी एवं तांकर कोन रिक्वेस्ट अछि एही एसएमएस रे लिखा अछि सुनिबा को चाहो चंदी सातो जन्म में तेरा साथ निभाऊं का कुमार सानू को कंसरे दिलवाले चलचित्र रो एवं लेखुचंदी गुड मॉर्निंग देव मित्र मैम नमस्कार आपन को मध्य वेरी गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ टाटा स्टील प्लांट परिवार तरफ रु ओडिसा वासी को प्यार भरा नमस्कार अपा आज हमर स्टाफ राजकुमार भारद्वाज करो हैप्पी वाला 1 ईयर एनिवर्सरी सिति पाई बहुत बहुत शुभकामना जणई देबे निहाती भाव रे जेहेतु राजकुमार भारद्वाज सरन करो आज हैप्पी वाला एनिवर्सरी अछि मु जगतनाथ जगन्नाथ को पाखरे प्रार्थना करिबे कि तांकर जीवन साथी को सहित तांकर इ भल पाइबा सब बड़ पाई टिके टिके करी बढ़ु थाउ एवं जगतनाथ जगन्नाथ तांको ढेर सारा आशीर्वाद करंतु एवं ता सहित एई मेसेज टी पठी चंती आभास सेन रोहित सेन दीपक कुमार राजकुमार भारद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा टाटा स्टील प्लांट रु पठी चंती निहाति भाबर आपन समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद एते ब्यूटीफुल सा मेसेज हम पाखो को पठी थिबारु आपन को मनपसंद रो गीत देवमित्र आपन को निहाति भाबर सुनेबो चलन देखिबा परवर्ती एसएमएस रो रिक्वेस्ट केओ कोठो लेखि चंती एही एसएमएस टे आसुची बांकी कॉलेज बांकी रु पठी चंती प्रभात बलियार सिंह चंदन एवं टुनी सुनिबा को चाहि चंती साथी एल्बम रु जवना सागर रु सामुकटे खोजुथिली निहाती भावरे ब्यूटीफुल सा गीत एवरग्रीन गीत मु आपन को श्योर सुनीबी मोहम्मद अजीज का कंठरे ताले चलन तो बिल्कुल भी लेट न करी सुनी नबा बैक टू बैक एक दुटी ब्यूटीफुल ट्रैक को

शौचालय च रेनबो एसएमएस रो अपना माने ट्यून कर छंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक कृत एवं मित्र आज आपनंग सहित चलन देखबा परवर्ती गीत पई की आउ कोठ रिक्वेस्ट कर छंदी एवं तांगर रिक्वेस्ट बड़ा गीत कोना छे एही एसएमएस पई रिक्वेस्ट कर छंदी सुमनत साहू जिगरण पटामुंडी केंद्रापडा रो एवं सुनिबा को चाहै छंती ओ माय लव चलचित्र रो आकाश रे मेघ तो गीत टिको निहाते भाबरे आपनंग मन पसंद रो गीत एवं मित्र आपनंग को शोर सुनिबो ताले चलन तो बिल्कुल बिलीव न करी सुनि न पाई ब्यूटीफुल सा ट्रैक को

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य देई दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछि असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।

जुही चावलाक जर्नी र टर्निंग पॉइंट हला सुपर हिट फिल्म कयामत से कयामत तक रे। एही सिनेमा रे

तेबे साथी ए थिला आजिरो कलाकार रे जुही चावलांग विषय रे किछि सुंदर कथा जहा 90s रो मेमोरी को पूरा पूरी ताजा बने देला। तेबे साथी आजि त सबै हे जाय छी कलाकार सो को एठी रखो जगो।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

0: नमस्कार सुनीता, केमिती अछ? आउ आजी एठी केमिती?
1: नमस्कार दीदी, आज मो झियो को 14 वर्ष पुरिला त तारी पई उपहार नबा को आसीतिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य देई दियो। एही टीका मो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मो एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना, किछि असुविधा हैनि। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे कविता, भल लगिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी मो झियो हे मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा, तम झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोन कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां, एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय, निज झियो को HPV टीका देबा पाई वैक्सीन पोर्टल UWIN रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पाई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणारे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पाई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।